मनोरंजन साहित्य और कला, संस्कृति पर्यटन र विकास कला दी जनपक्षीय आवाज हमरो रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज़।

सारी रात रोते रहते हैं रुलाते रहते हैं, और सारी रात रोते रहते हैं रुलाते रहते हैं, थके लिखे हैं कर्मों में सो खाते रहते हैं, ना कोई हंसाने वाला ना नचाने वाला हमको, तो खुद का हाथ पकड़ के खुद को नचाते रहते हैं, हम इतने पागल हो गए तेरे जाने के बाद के बुझे हुए दियों को बुझाते रहते हैं। अरे उसने हमको छोड़ा है ये बात कह के तेरे जैसे लोग जानी आते रहते हैं।